0: Alright, for now, let's cut across live to Slovakia, where Prime Minister Modi is on a visit.
1: और हमारे लोगों के उज्जवल भविष्य बहुत बहुत नमस्कार.